तभ्यात्मनात्मनः जाहि शत्रुं महाबाहु कामरूप दुरासदम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रयुगशृङ्गवाक् संवादे कर्मयोगनाम तृतीयः।

ओम हर हर हर महादेव। उमापति महादेव की जय। सियापति रामचंद्र की जय। ऑल ऑफ यू प्लीज स्टैंड एवरीबॉडी प्रिपेयर फॉर रमन आरती। वी हैव लॉग्ड इन, प्लीज वॉच इट एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेट भगवान श्री राम

जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री सरस्वती माता की जय, श्री रामायण माता की जय, श्री तुलसीदास महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सदगुरु के दंडवत जय जय सीताराम। आप कड़ा बैठे सबका मजा भी ऑल ऑफ यू। श्री राम जय, राम जय, जय राम। श्री राम जय, राम जय, जय राम। श्री राम जय, राम जय, श्री राम।

चंद्र की जय। मैं गुरु जी रोड भगवान से लिसना, भगवान हिये यो कथा, भगवान हिये व्हेन यू सिंग रामायण कथा, हनुमान जी हियरिंग योर कथा एज वेल। यू डोंट बिलीव दैट, प्लीज बिलीव दैट। हनुमान जी इज प्रेजेंट विद कथा, भगवान शुड ऑलवेज चैंट इट विद फेथ एंड डिवोशन। श्री राम प्रेजेंट ऑल्सो देयर। सो टू बी अ गुड लिसनर, बी अटेंटिव, लिसन टू एवरी सिंगल वर्ड। Every word has a deep meaning for you, O divine traveling soul. Therefore, who, then I did listen to Bhagwan Shri Ram Katha. Who are you, devotees? Ramayana tells you who you are now. Je gavahi yaha charita subhari. Who hear this Katha? This is you. Je gavahi yaha. Yaha means this Katha.

0: ठीक है, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। दिस मानस, दिस डिवाइन माइंड, दिस डिवाइन स्टेनलेस माइंड, दिस डिवाइन लेक, शेप ऑफ पाइटी एंड गुडनेस, कथा सेज, यू नो हु एंजॉय दिस? Divine souls enjoy this. Walk with the divine souls. Go where they are going. Sit with them and enjoy this. The company of saints and sages, they sing this Ramayana Katha. Why shouldn't we as well? Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Narayan Bhai Ji, Bhajan.
1: Ram Naam Ki Loot Hai.

0: चाहते हो?
1: नहीं।
0: तुम लोग उदास रहना चाहते हो?
1: नहीं।
0: तुम लोग हंसना चाहते हो?

हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भगे कभी उधर भगे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान

0: आपका धर्म आपका स्टेशन टीवी जागृति।
1: Looking for something truly unique this season? Then you need to visit Fab India Expo, located opposite Medford Gas Station, Shugwanas. Brand new containers have just arrived, packed with one-of-a-kind garments you won't find anywhere else. Whether you're shopping for something stylish, traditional, or custom-made, we've got you covered with made-to-order pieces tailored just for you. And it doesn't stop there. Take a stroll through our full food court, offering delicious options for the entire family. From savory bites to sweet treats, there's something for everyone. Plus, don't miss our big sale on furniture. Upgrade your home with beautiful pieces at unbeatable prices. So come on down to the Fab India Expo, located opposite Medford Gas Station, Shugwanas, where culture, style and savings come together.
2: माखन चुराने वाले को नटखट नहीं चोर कहते हैं। क्यों जा रहे हो?
3: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
4: अंत में आरंभ है,
3: एक और प्रेम है।
4: आरंभ में ये अंत
3: और दूसरी ओर कर्तव्य।
5: मैं वासुदेव कृष्ण समस्त यादव सभा के सामने ये प्रण लेता हूँ, जब तक मुझ पर लगा ये कलंक नहीं मिटा देते, मैं वापस द्वारका नहीं आऊंगा।
3: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा। सभा में चीर ग्रहण किया इन्होंने द्रौपदी का और सारे धर्म अधिकारी चुप रहे।
6: छोड़ो ये बंसी कृष्ण और उठाओ शस्त्र।
3: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।